0: सपने अपने
1: आई वांट यू टू सेट इन थिंक
0: कितने जनाजे देखे
1: कितने जनाजे देखे
0: कितने
1: हाउ मेनी जनाजे यू सीन
0: देखे
1: आई वांट यू टू लिसन नाइसली